पाप इंता तुम्हें कम तबान की पाने हो चोंग नम कुन वलाई तुम लन्याम मुखाव याग तुम को खाला पाता को एन थन ताक पेन यदो नई